0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय।
0: भक्तर भगवान की
1: जय।
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय।
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

पहन के जाती मैडम डिस्को, वीआईपी में कॉम्प्लीमेंट्री शॉर्ट्स भी दे दो इसको, इसको गाड़ी चाहिए लंबी, म्यूजिक चाहिए लाउड, ये जाती

0: दस छैसठी एक सय पैसठी अन्ठानब्बे पाँच दस छैसठी एक सय पैसठी
1: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम बयानब्बे थोप्लो सात मेगाहर्ज़।

का पना बढ़ो सुस्ताई सुस्ताई सहजा भौतिक जगत में नहर नारी ले प्रगति पथ को यज्ञ।

उल्टा पानी परो पिपल को पता माराम को उठी सीता को आतामा राम को उठी सीता को आतामा राम को उठी सीता को आतामा कृष्ण जी को दयालु मनात दन्त छोड़ी जाँदैन मनन्त कृष्ण जी को बत्ती से दन्त दन्त छोड़ी जाँदैन मनन्त दन्त छोड़ी जाँदैन मनन्त दन्त छोड़ी जाँदैन मनन्त कृष्ण जी को